इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: This is something

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब टाइम आ चुका है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने का only on सबसे पहले सीबीआई ने एक्टर मॉडल त्विशा शर्मा डेथ केस में 636 पेज चार्जशीट फाइल की है. हर हस्बैंड समर्थ सिंह एंड मदर इन लॉ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह फेस चार्जेस इंक्लूडिंग डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस एंड अबेटमेंट रिलेटेड प्रोविजंस. त्विशा वाज फाउंड डेड एट हर मैट्रिमोनियल होम इन भोपाल इन मे. Number two per Heroes and Nashville star Hayden Panettiere has died at just 36. Her father confirmed the news and the cause of death has not been disclosed. She leaves behind her 11-year-old daughter. 36 is incredibly young, so today we remember her for the work she gave the audiences, especially as Claire Bennett in Heroes and Juliet Barnes in Nashville, sending strength and prayers to everyone who loved her. And lastly, a news report says U.S. college could lose around $3.4 billion as international student numbers decline. With an estimated 112,000 fewer international students in the 2026-27 academic year, Indian student numbers have also fallen amid tighter immigration policies and stricter visa processing. So if you're a student and a parent, this is definitely one to watch. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Follow me Instagram. और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Murga. Na vidva la murga.
0: Mirchi, murga. Murga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी जी जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
2: पूजा
3: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर मेरी बात तो सुनिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया बाय 9 विकेट्स इन द फर्स्ट टेस्ट इन डार्विन, एंड दिस इज बिग बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैव नेवर बिफोर लॉस्ट टू बांग्लादेश एट होम अक्रॉस फॉर्मेट्स। दैट्स राइट, बांग्लादेश हैव नाउ बिकम ओनली द थर्ड एशियन टीम आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान टू विन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया in Australia. For Bangladesh, it's also their second ever test victory against Australia. So Bangladeshi cricket fans, aaj to celebration banta hai. And Australian fans, थोड़ा सा चाय पी लो, थोड़ा सा वक्त दो, emotions settle होने दो. And speaking of celebrations, if diamonds are your thing, then Tanishq presents Festival of Diamonds. Get up to 25% off on diamond key value and making charges. साथ साथ में अगर तुम्हारे पास पुराना gold पड़ा हुआ है, which is 18 carats and above, उसको लेकर जाओ, exchange कराओ, zero deduction पर, only at Tanishq, जहां पर Festival of Diamonds चल रहा है. Terms and conditions applied. अभी फिलहाल team मिर्ची प्रिज बने की बारी है. फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS. सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज.

0: सारा मेरा। उप्स।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, देन लिसन अप। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। अ बिग हैप्पी बर्थडे शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे। आज का दिन काफी स्पेशल है, एक तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे और साथ साथ में तुम्हारे कुछ लेजेंडरी सेलिब्रिटीज भी अपना बर्थडे मना रहे हैं। सबसे पहले रॉबर्ट डेनिरो, हु वाज बोर्न इन 1943, एंड देन वीव गॉट अनदर ब्रिलियंट एक्टर शॉन पेन, हु वाज बोर्न इन 1960 एंड मेकिंग द यंगर जनरेशन प्राउड। ऑस्टिन बटलर, हु was born in 1991. He's the star of Elvis and June Part 2. Also celebrating is Thaisa Farmiga, born in 1994. Known for her American Horror Story roles. And finally, the kid Laro is also celebrating his birthday today, who was born in 2003. So whether you're turning 21, 31, 51 or 71, or simply choosing to keep your age classified, today is your day. Happy birthday to you from me, Bolo to Prisala, only on Mirchi Mornings. Come and tell me, agar kisi ko shout out dena hai birthday ka khud ke liye ya phir apne friends ke liye. Mera handle name hai Mirchi Pris, that's on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is also तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड in this film it's a little different in fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, गानों को थोड़ा सा रोक कर सुनते हैं अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर प्रिसिला के साथ आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट।
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Today morning gold trading at 4390. 4390 पर ट्राई आउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड पर है। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए आइए RajJewels.com के साथ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, एनी शेप एनी साइज एनी कलर एनी क्लैरिटी। आइए राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन को अवेल करें जिसमें आप गोल्ड ज्वेलरी आज घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, बिना किसी हिडन फी के आज ज्वेलरी फाइनेंस करा सकते हैं 9 मंथ्स के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के। ज्वेलरी आपके साथ आज घर जाती है और 9 इंस्टॉलमेंट्स में राज ज्वेल्स को पैसे मिलते हैं। कैसे, आइए RajJewels.com पे हमारे साथ डिस्कस करें और शिप कराएं ज्वेलरी एनीवेयर विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू।
1: एंड देयर यू हैव इट, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। ऑफ कोर्स मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड द पेंटागन टू सब्सटेंशियली रिड्यूस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया। ट्रंप सेड द ड्रिल्स आर कॉस्टली एंड सेंड व्हाट ही सेड एन इनअप्रोप्रिएट एंड हॉस्टाइल सिग्नल टू नॉर्थ कोरिया। ही ऑल्सो सेड साउथ कोरिया डिक्लाइंड द यूएस रिक्वेस्ट टू हेल्प विद एफर्ट्स कंसर्निंग ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोटिंग द रिस्पॉन्स एज नो थैंक्स। साउथ कोरिया सेज इट्स रिव्यूइंग द कमेंट्स एंड होप्स द मूव कुड क्रिएट स्पेस for renewed dialogue with North Korea. Number two, a Chinese Communist Party linked official Philip Chi reportedly bought the securities building near the White House for $8.4 million. That's roughly 70 crore rupees. And yes, the location is what's raising eyebrows. The building is reportedly only about 650 feet from the White House. US officials and security experts have raised concerns about whether a property that close could create surveillance or intelligence risk. And lastly, Arsenal have beaten Manchester City 3-0 to win the Community Shield, and Arsenal wasted zero time. Ricardo Calafiori scored in just 24 seconds, followed by Kai Havertz and captain Martin Odegaard. City ko comeback ka chance hi nahi mila. Match shuru hua aur Arsenal ne terms and conditions apply bhi nahi pada. And that's your Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mere sath connect karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान।
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
3: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
3: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल के बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी? पोस्टमार्टम, मेरी बात सुन लीजिए आप।
2: नहीं,
3: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल रहा
3: हूँ, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
2: ऐसा केस
3: आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से ऐसी बात करता है, कौन है तेरी
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: तेरा दिमाग खराब हो गया।
3: सर मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन ना लें।
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं। क्या
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब वो टाइम आ चुका है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार करते हो, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राशिज,
2: मिर्ची राशि जोन।
1: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, घर के मैटर्स थोड़े से स्मूथ हो रहे हैं, बस एवरीवन नीड्स टू नो देयर रोल। बाउंड्रीज सेट करो, तुम अपने घर के मेंबर हो, 24/7 कस्टमर सर्विस नहीं हो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज क्वेश्चंस केयरफुली पूछना, कॉन्वर्सेशंस को अननेसेसरीली नेटफ्लिक्स का ड्रामा मत बनाओ, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेंथन दोज क्लोज फ्रेंडशिप्स। लकी कलर फॉर यू इज स्टील, लकी नंबर इज 6। जेमिनी दैट इज मिथुन राशि, आइडियाज बहुत हैं, ग्रेट, अब उन्हें प्रैक्टिकल प्लान्स में कन्वर्ट करो, और इमोशनल होकर इंस्टेंट डिसीजंस अ बिग नो नो। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 23। कैंसर यानी कर्क राशि, जब टारगेट क्लियर होता है मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, बट हाँ रेस्ट करना भी जरूरी है, लो बैटरी पर कोई भी हीरो चल नहीं सकता है। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, आज तुम्हारी बातों में नेचुरल अथॉरिटी और वार्मथ है, यूज इट वाइजली, पेशेंस से हैबिट्स बिल्ड करो, हेस्ट से नहीं। लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 19। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, ग्रुप प्लान्स फ्रेंडली रखने हैं तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने एक्चुअल फीलिंग्स को ऑनेस्टी से चेक करो। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 4। एंड दैट्स इट, राशि जोन पार्ट 1 हुआ खत्म। राशि जोन पार्ट 2 यानी बची हुई राशि आएंगी थोड़ी सी देर में। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुनो तुम ये मिर्चीदार बैंगर्स, और मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। आई विल बी बैक इन अ व्हाइल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: चलो कंटिन्यू करते हैं लीब्रा से पाइसीस तक की राशियों का सफर इन राशि जोन पार्ट टू विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, प्रोफेशनल प्लान्स अब स्टेडी होने लगे हैं व्हेन यू क्लियरली से व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड इफ यू आर फीलिंग इमोशनली न्यूट्रल टुडे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हर दिन बॉलीवुड क्लाइमैक्स थोड़ी होने वाला है। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 8। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, डेली रूटीन को सॉलिड रखो एंड स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करो और जब विक्ट्री मिले तो सेलिब्रेट भी करो। सोलो सेलिब्रेशन में केक कौन खाएगा, तुम? Of course, तुम। Lucky color for you is burgundy. Lucky number is 17. Sagittarius, यानी कि धनु राशि, shared plans में terms रखो clear. So everyone stays on the same page और stressful outdoor tasks को overdo मत करो यार आज के दिन। Adventure को भी थोड़ा सा limit में करो तो boss style रहेगी। Lucky color is sky blue. Lucky number is 3. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, पार्टनरशिप प्लान्स बनाते वक्त होम रियलिटीज को भी फैक्टर इन करो। स्मॉल सेटबैक्स आए तो कीप गोइंग, लाइफ गूगल मैप्स नहीं है, हर राउट परफेक्टली नहीं मिलने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन। लकी नंबर इज 21। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एनर्जी कंजर्व करो इंस्टेड ऑफ चेजिंग एवरी डे ड्रीम। प्रैक्टिकल कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स पे फोकस करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी है बट ब्रेन को स्टॉर्म में मत छोड़ दो यार। लकी कलर is electric blue. Lucky number is 12. And finally Pisces yani ki main rashi, aaj urgent matters juggle karte waqt pace yourself, simple physical self care, thoda sa stretch karo, pani piyo, मूड को बेटर करने के लिए कुछ बढ़िया मिर्चीदार म्यूजिक सुनो और बने रहो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। योर लकी कलर इज रोज, लकी नंबर इज 9 एंड दैट वाज द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट 2। मेरा हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। ड्रॉप मी अ हाई देयर एंड व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। अभी मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे, स्टे ट्यून and stay

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ ना. आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाडिया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 इयर्स बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो, मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
3: स्पीकिंग,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
3: 2 घंटे करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं।
4: वही, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म पहले गई थी डिम्पल कपाडिया के पास और उन्होंने मना कर दी। इसलिए मना कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी सागर को साइन कर चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वन फिल्म दैट वी ऑल लव्ड, वन फिल्म जिसमें हमें श्रीदेवी बहुत बहुत पसंद थी, बताओ कौन सी? सदमा। वो फिल्म जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं देख पाती, अगर किसी भी चैनल पे आती है ना मैं नहीं देख सकती, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स शेक्स मी। सो वो ना मुझे एक अच्छे खासे हैंगओवर में छोड़ के जाता है, तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म जिसने श्रीदेवी के करियर में सबसे बड़ा बदलाव लाया और उसके बाद से उनको हिंदी फिल्में और ज़्यादा मिलने लगी थी। अब सदमा पहले गई थी डिम्पल कपाटिया के पास, बट डिम्पल कपाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म। नाउ इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, सागर की बातें हो रही आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे है आप और श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का एक ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया, जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड ओहो। तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई, मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है। इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन। ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कमबैक ऑफ डिम्पल कपाडिया। इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म। इट वाज डिम्पल। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे, वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी वापस और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: मुल्तानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस समय के अखबारों की ये सबसे बड़ी खबर हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है सागर की। इट वॉज अ कमबैक फिल्म डिंपल कपाडिया की। 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी, मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स शी मेड अ कमबैक विद द फिल्म ऑफ कोर्स सागर एंड रमेश सिप्पी वाज डायरेक्टिंग द फिल्म। अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे, बल्कि पता है कौन थे? एमएफ हुसैन साहब, द रिनाउंड पेंटर एमएफ हुसैन साहब। वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयरफुट, नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया। वापस आओ और भी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान।
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
2: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर। मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से।
1: हाँ।
2: तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
1: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
2: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें। आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई। मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप। मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो। एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ।
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार। मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
1: ऐसा
2: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे। वो बाप बनने वाले
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है। कौन है?
2: खुशी की बात मत करिए आप। आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: मेरी बात सुनिए।
3: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं। आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है। आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है। अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पटरा। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

कहते तो ये भी हैं कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाटिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म पुरानी जीन्स पे। आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाडिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाडिया ने बॉबी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई। और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाटिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाटिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाटिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना,
2: हिट

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किस में उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हैं, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर के टाइम पे रमेश सिप्पी वॉज इन लव, वॉज हैविंग एन अफेयर विद डिम्पल कपाटिया, एंड ही वॉन्टेड टू शो डिम्पल जी इन, यू नो, इन अ रोमांटिक एंगल, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस दिखे। तो उन्होंने इन तीनों एक्शन फिल्मों के बाद डिम्पल कपाटिया और दो हीरोज के साथ बनाई थी सागर, विच वॉज अगेन अ स्मैशिंग हिट। वेल, इसी फिल्म का गाना आपके लिए Only on Purani Jeans, you're listening to me on Mirchi, It's Hot.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आकाश
3: जी।
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना।
3: बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है।
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो यही मिली है आपको।
3: जी बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है।
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना। कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं वो आप फॉलो करेंगे इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
3: राइट।
4: चलिए अच्छा इसमें ये है मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ। मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है।
3: जी डेफिनेटली।
4: ओके अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं।
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
3: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है।
4: नहीं नहीं ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा है ना।
3: फिर देखिए
4: हाँ बताइए
3: की बात अलग है ना, उसको सीरियसली गुस्सा आ गया और
4: अरे नई बात तो सुनिए गुस्सा आपको आज
3: तो प्लीज रहने दीजिए इसको, मेरी बात मान लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया बहुत कुकड़ू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाटिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचम दा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाटिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिंपल कपाटिया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिंपल कपाटिया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम यू नो पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफकोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा। और

0: वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। Alright, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते हैं। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनीवे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

0: यार कभी कभी मन होता है ना इस कॉर्पोरेट वाली नौकरी को छोड़ के पहाड़ों में जाके मस्त अपना एक कैफे खोल लो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये थॉट कभी ना कभी तो आया ही होगा। इनफैक्ट जब आप हिमाचल या कहीं पहाड़ों में जाते होंगे तो और भी ज्यादा ये थॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपके दिमाग में। और अचानक से मैं इस चीज की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज OTT पे फिलहाल मुसाफिर कैफे नाम की एक सीरीज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है एंड आई हैव लव्ड इट टू द कोर। माइंड यू ये दिव्य प्रकाश दुबे की नॉवल मुसाफिर कैफे पे बेस्ड है एंड इस सीरीज की इतनी चर्चा इसलिए बिकॉज इसका सीजन 2 अभी अनाउंस भी हो चुका है एंड जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स से इसको लेकर उसके मद्देनजर मैंने आज मिर्ची गिरफ्तार किया है अपने शो पे नन अदर देन प्रीति कौशिक का रोल प्ले करने वाली महिमा मकवाना को। वेल, उनके साथ इस कॉन्वर्सेशन के अलावा देयर इज अ लॉट प्लान्ड फॉर द शो बट उसके लिए आपको ट्यून्ड इन रहना पड़ेगा ना मिर्ची पे। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Rabbala.
1: Murga, murga. La vietva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
3: किसके यहाँ से?
4: स्वर्गीय अनिल चौहान.
3: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
4: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब.
3: मैं बोल रहा हूँ अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ.
4: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
3: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
4: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
3: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
4: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
3: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
4: कौन कौन कौन कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
3: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
4: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
3: ऐसा
4: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले
3: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है तेरी
4: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
3: जी,
4: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
3: मेरी बात सुनिए.
5: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
3: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
5: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ट्रेंडिंग जिसका मुझे था इंतजार, अरे अरे इससे आगे गाना गाऊंगी तो आप शायद रेडियो का वॉल्यूम कम कर देंगे या चैनल चेंज कर देंगे। एनीवे, मैं बात कर रही हूँ मच अवेटेड सीजन 2 ऑफ फर्जी बाबू मोशाय, जिसकी शूटिंग इज ऑलरेडी अंडरवे। बाकी शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर इस सीरीज में हमने राशि खन्ना को भी देखा था, जो आरबीआई ऑफिसर मेघा व्यास का रोल प्ले करती नजर आई थी, और वो इसी रोल को एक बार फिर सरप्राइज कर रही है इन द सेकेंड सीजन। इनफैक्ट उनके ही शूट से एक बीटीएस भी इंटरनेट पे बस कर रहा है। बाकी राजन डी के डायरेक्टोरियल इस ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर के बारे में और कुछ अपडेट मिला तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। उड़ता तीर लेने की बात नहीं कर रही हूँ यार, ये तो अपकमिंग फिल्म का नाम है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल निभाते नजर आएंगे इसमें। मूवी के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं आकाश ए कौशिक, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है, एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 9th of October। बाकी ये फिल्म एक ह्यूमर ड्रिवन फैमिली एंटरटेनर है जिसका कोर इज केओस एंड कॉमिक सिचुएशंस। 26 सालों बाद एक अमेजिंग ग्रैंड बी टाउन कमबैक करने वाली हैं शिल्पा शिरोडकर, वो भी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मालामाल वीकली 2 में। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म में पहले सिर्फ परेश रावल थे, लेकिन उसके बाद इसमें परिणीति चोपड़ा और रवीना टंडन भी ऐड हुई, और अब द अपडेट इज दैट शिल्पा शिरोडकर अपना कमबैक कर रही हैं इन द बी टाउन विद दिस मूवी इटसेल्फ, जिसके साथ ही इस फिल्म के लिए मेरे एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर चल रहा है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: देखो प्यार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्यार से कभी आपका मन नहीं भर सकता।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और ठीक वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक फिल्म ऐसी होती है जिससे उसका मन कभी भी नहीं भर सकता। और आज आपकी कुछ ऐसी ही फेवरेट वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। सो आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स, नाउ कृष्ण इज विद मी। बताओ दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारी वो कौन सी फेवरेट वाली फिल्म है जो तुम कभी भी देख सकते हो?
2: यार दो फिल्म है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। पहली फिल्म है पार्टनर, क्योंकि उसमें गोविंदा और वो सलमान की वो जो केमिस्ट्री पूरी रहती है ना, बड़ी मजेदार सी थी। और वो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, वो हमेशा खुशी मुझे उस मूवी को देख के होती है। और दूसरी फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी, तानी पार्टनर,
0: क्या बात,
2: जो वो पूरा केमिस्ट्री रहता है, आहा हा, मजा ही आ जाता है। और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे उस पूरी मूवी का लगता है, सूरी पापे का जो दोस्त होता है बॉबी, मुबारक बधाइयां पचा के सूरी पापे को जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो प्रोसेस बड़ा मजेदार रहता है। तो ये दो फिल्म मैं कभी देख सकता हूँ, मजा आता है, दिल खुश होता है।
0: तो आप समझ सकते हैं लोग अपनी उस फेवरेट फिल्म की बात करते करते ही कितने अच्छे वाले जोन में चले जा रहे हैं। तो फटाक द चिटाक आप भी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पर कनेक्ट कीजिए और अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में मुझे जरा बताइए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दे हैं।
1: खेलो मगर प्यार से।
2: श्रुति श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ, बाहु मोशाय, जिसकी शुरुआत आज मेरे साथ की बैंगलोर से मयूरी जी ने। और आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ी हैं सूरत से निशा जी। सो आर यू रेडी टू कंटिन्यू द गेम मैम? ऑल द बेस्ट देन। माई क्वेश्चन वॉज, ऐश्वर्या राय किस फिल्म में एक स्मॉल टाउन सिंगर होती है जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है?
3: ताल।
1: ताल में मानसी से किसको प्यार होता है?
3: अक्षय खन्ना।
1: अक्षय खन्ना किस फिल्म में एक एरोगेंट एक्टर हैं जिसको ऑस्कर जीतने से ऑब्सेशन है?
3: तीस मार खान।
1: सो तीस मार खान में वॉनबी एक्ट्रेस कौन है?
3: कैटरीना कैफ।
1: वेरी गुड। कैटरीना कैफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर किस फिल्म में है?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
1: ओके, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक का फोन कार से बाहर कौन फेंकता है?
3: फरहान अख्तर।
1: वेरी गुड। फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: विद दीपिका पादुकोण।
1: यस,
3: कार्तिक कॉलिंग कार्तिक।
1: बहुत बढ़िया, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में उनको किससे प्यार होता है?
3: दीपिका पादुकोण।
1: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में साउथ इंडियन डॉन की बेटी है जो अपनी शादी से भागती है?
3: चेन्नई एक्सप्रेस।
1: और आपने भी एकदम एक्सप्रेस मोड में ये गेम कम्प्लीट किया है। और इसी के साथ आप बनी है

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana.
1: Rabana.
0: Murga, murga. La virtua la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
3: वही तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना.

0: मेन स्ट्रीम मानसून मूवी से अलग हैं ये फिल्में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: क्योंकि यहाँ रेन का इस्तेमाल किया गया है टू एक्सप्रेस सोशल डिवाइड, इंटिमेसी, डिजायर, लोनलीनेस एंड जॉय। और आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने बात की अबाउट मानसून वेडिंग, अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट तुम्बाड़, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राही अनिल बारवे, जिसमें रेनफॉल को एज अ सिंबल ऑफ मॉरल डीके दिखाया गया है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं। पहली, इसका विजुअल वर्ल्ड, हर फ्रेम इतना हॉन्टिंग और सिनेमेटिक है कि लगता है कि आप खुद तुम्बाड़ की बारिश भरी गलियों में चल रहे हैं। दूसरी, ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये ग्रीड, अम्बिशन और इंसान की कभी ना खत्म होने वाली भूख की कहानी है। और तीसरी, इसका क्लाइमेक्स, ऐसी एंडिंग जो क्रेडिट्स के बाद भी काफी देर तक आपके दिमाग में घूमती रहती है। इन शॉर्ट, तुम्बाड़ सिर्फ डराती नहीं, सोचने पे भी मजबूर करती है, एंड वही उसे कल्ट भी बनाती है। अ मस्ट वॉच फॉर श्योर। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे बात करते हैं साल 2004 की रिलीज रेनकोट, जहां ऋतुपर्णो घोष ने अपनी इस फिल्म के दोनों प्रोटैगनिस्ट के जो भी रिग्रेट्स हैं उसको लिंक किया है बारिश से। इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं। पहली, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की रिस्ट्रेन्ड हार्टफेल्ट परफॉर्मेंसेस, जहां आंखों ने लफ्जों से ज्यादा बात की है। दूसरी, ऋतुपर्णो घोष की स्टोरी टेलिंग, जो दिखाती है कि कुछ मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ चुप हो जाती हैं। और तीसरी, इस फिल्म की बारिश। यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक एहसास है, क्योंकि हर बूंद अधूरी मोहब्बत, पुरानी यादों और उन बातों का बोझ लेकर गिरती है जो दोनों एक्टर्स एक दूसरे से कभी कह ही नहीं पाए। एंड ऑनेस्टली, शायद ये फिल्म देखने के बाद आपको बारिश पहले जैसी फील ना दे। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी तो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: not your typical monsoon movie.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम. देखो यार, बारिश और बॉलीवुड से सबसे पहला गाना मेरे दिमाग में यही आता है. या फॉर दैट मैटर, गीली साड़ियों में नाचती लड़कियां, कोरियोग्राफ्ड नंबर्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी मॉनसून मूवीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने बारिश को एकदम ही अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मॉनसून वेडिंग, नंबर दो पे तुम्बाड़, नंबर तीन पे रेनकोट, एंड अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी कौन. ये फिल्म आई थी 1999 में. एंड कुछ फिल्में आपको डराती हैं, कुछ फिल्में आपको हर इंसान पर शक करना सिखाती हैं. वेल, कौन उन्हीं फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, सिर्फ तीन कैरेक्टर्स और लगभग पूरी फिल्म एक ही घर के अंदर, फिर भी सस्पेंस एक सेकेंड के लिए भी कम नहीं होता. दूसरी, उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंसेस जो बिना लाउड हुए आपको एज ऑफ योर सीट पर बिठा देती हैं. और तीसरी, इसका ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई असली खतरा था कौन. और इस पूरी कहानी के बीच जिस हिसाब से बारिश और थंडर अपना रोल प्ले करते हैं, दैट ट्रैप्स यू इनसाइड इट्स पैरानोया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे बात करूंगी अबाउट द फिल्म धोबी घाट. मुंबई को अगर किसी फिल्म ने सिर्फ दिखाया नहीं महसूस करवाया है तो ये फिल्म है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, मुंबई ऑफ कोर्स, यहाँ शहर सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, फिल्म का एक जिंदा कैरेक्टर है. दूसरी, चार अलग जिंदगियां जो एक दूसरे से जुड़ी भी हैं और बिल्कुल अलग भी, जस्ट लाइक आवर वेरी ओन मुंबई. और तीसरी, इसकी खामोशी. ये फिल्म डायलॉग से कम और नजरों, तन्हाई और अनसेड इमोशन से ज्यादा बात करती है. और इस फिल्म के जरिए किरण राव बहुत ही खूबसूरती से अर्बन

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। जिसका मुझे था इंतजार, अरे अरे, इससे आगे गाना गाऊंगी तो आप शायद रेडियो का वॉल्यूम कम कर देंगे या चैनल चेंज कर देंगे। एनीवे, मैं बात कर रही हूँ मच अवेटेड सीजन 2 ऑफ फर्जी बाबू मोशाय, जिसकी शूटिंग इज ऑलरेडी अंडरवे। बाकी शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर इस सीरीज में। हमने राशि खन्ना को भी देखा था जो आरबीआई ऑफिसर मेघा व्यास का रोल प्ले करती नजर आई थी, और वो इसी रोल को एक बार फिर सरप्राइज कर रही है इन द सेकेंड सीजन। इनफैक्ट उनके ही शूट से एक बीटीएस भी इंटरनेट पे बस कर रहा है। बाकी राजन डी के डायरेक्टोरियल इस ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर के बारे में और कुछ अपडेट मिला तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। उड़ता तीर लेने की बात नहीं कर रही हूँ यार, ये तो अपकमिंग फिल्म का नाम है। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल निभाते नजर आएंगे इसमें। मूवी के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं आकाश ए कौशिक, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है, एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 9th of October। बाकी ये फिल्म एक ह्यूमर ड्रिवन फैमिली एंटरटेनर है जिसका कोर इज केओस एंड कॉमिक सिचुएशंस। 26 सालों बाद एक अमेजिंग ग्रैंड बी टाउन कमबैक करने वाली हैं शिल्पा शिरोडकर, वो भी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मालामाल वीकली 2 में। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म में पहले सिर्फ परेश रावल थे, लेकिन उसके बाद इसमें परिणीति चोपड़ा और रवीना टंडन भी ऐड हुई, और अब द अपडेट इज दैट शिल्पा शिरोडकर अपना कमबैक कर रही हैं इन द बी टाउन विद दिस मूवी इटसेल्फ, जिसके साथ ही इस फिल्म के लिए मेरे एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर चल रहा है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों, मंडे का मूड भी ना कभी कभी बिल्कुल बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा लगता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। तो जी हाँ, कभी कभी लगता है कि हम रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप सिड है, यानी थोड़े लॉस्ट, थोड़े स्लीपी। और कभी कभी लगता है कि कल होना हो के अमन है, फुल ऑन स्माइल के साथ, रेडी टू टेक द डे ऑन। वैसे यार, मंडे का ना रियल ट्विस्ट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आज का रोल क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा या फुल फिल्मी एनर्जी। तो आज का सीन सिंपल है, अपने आप को हीरो मोड में डालो तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा। और मुझे जरूर बताना कि आपका मंडे कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा होता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा जो मंडे मोड है ना, उसके लिए जो परफेक्ट गाना है वो मैं अभी आपके लिए बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा भी होता है?
3: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर देखिए,
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, हाँ, वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया और
3: अरे नई बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ुकू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ुकू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला। मिर्ची फ्रेश माल।
5: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें यार पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। चल मी और इंस्टाइट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओह गॉड, वन मोर।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज़ माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था। और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है। ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ। टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओहो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज फ्रॉम मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता है ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी यहां पे बातें हो रही है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त दस डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओज के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vid bala burka.
1: Mirci, burka. Hello.
2: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान.
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब.
1: मैं बोल रहा हूँ अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
2: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर. मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
1: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ. तू सोच कम से कम.
2: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर. आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
1: सर ये नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
1: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ. आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
1: डॉक्टर बोल लो तुम.
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
1: ऐसा केस
2: करूंगा करेंगे. केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
1: परिवार वाले आदमी से ही बात करता है, कौन है तेरी
2: बेवकूफी की बात मत करिए. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
1: जी
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं. क्या
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. विद मिर्ची फ्रेश माल.
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी हम जिस चीज़ की तलाश बाहर करते हैं उसकी वैल्यू पहले से ही हमारे पास होती है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। वैसे ही घर भी कई लोगों के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, एक फाइनेंशियल असेट भी होता है। और उसकी ज़रूरत पड़ने पर उस एसेट को किस तरह से स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है, उसके भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। चाहे एजुकेशन हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल, ऐसे ऑप्शंस को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, उसी के बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रामायणा का ट्रेलर तो रिलीज हुआ और उसे देखते हुए ना एक थॉट जरूर आया। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, हमारे एपिक्स में ना राजा और रानियों की दुनिया कितनी ग्रैंड इमेजिन हुई है। मतलब वो महल, कॉस्ट्यूम्स, रॉयल दरबार और स्पेशली उनकी ज्वेलरी, क्राउन से लेकर नेकलेसेस, इयररिंग्स और वो इंटीग्रेट डिटेलिंग तक, स्क्रीन पर वो रॉयल लुक देखो ना तो नज़र नेचुरली वही चली जाती है। और तब रियलाइज़ होता है कि ज्वेलरी हमारी स्टोरीज़ में सिर्फ सजने के लिए नहीं थी, सदियों से ग्रैंड्योर और रॉयल एलिगेंस का एक हिस्सा थी। और अब वैसे महल और दरबार भले ही आज की दुनिया में ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा रॉयल एलिगेंस अपने लुक में लाना आज भी पॉसिबल है। और इसी रॉयल मूड में तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउ 18 कैरेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अपने रियल लाइफ रॉयल मोमेंट्स में तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ थोड़ी सी ग्रैंडियोस जरूर ऐड कीजिए। आज ही विजिट कीजिए तनिष्क स्टोर एट 1429 ओक्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, एपिक की दुनिया के राजा और महारानियों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा है जरूर बताना। DM me on Instagram RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सिनेमेटिक ग्रैंडियर को कंटिन्यू करते हुए ये अगला गाना ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गुड़ किन खा लिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, भुआ जिदा नाड़ा किन खिंचे।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफर की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कंफर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

फ्रीडम ऐसी भी जो किसी कैलेंडर पे नहीं लिखी होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो फ्रीडम है जो मन करे वो पहनने की फ्रीडम। याद है वो टाइम जब फैमिली फंक्शन से पहले मम्मी बोलती थी कि ये पहन लो ये अच्छा लगेगा, और हमारा जवाब होता था नहीं मुझे तो वो पहनना है, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज पहनने का भी एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि स्टाइल शायद हमारी पर्सनालिटी का सबसे फन एक्सप्रेशन होता है, और हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कभी ट्रेडिशनल, कभी मॉडर्न, कभी सिंपल, और कभी फुल मेन कैरेक्टर मोड। और इस आजादी सीजन अपनी स्टाइल को चूज करने की फ्रीडम को इडन रो भी सेलिब्रेट कर रहा है। अगस्त 6 से 16 तक एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrobe.com। Eden Rope, a legacy of style। और दोस्तों अगर आपकी पर्सनालिटी एक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो कौन सी होती जरूर बताना। DM me on Instagram @mirchisiddhi, और फिर एक ऐसा गाना उस मेन कैरेक्टर एनर्जी के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: वही वही, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दें यार, मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहाँ हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशन, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ ऐसे एल्बम्स जो आज भी सुपर हिट है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे एल्बम्स बने हैं जिसमें यार एक से एक गाना एक से बढ़कर एक है। मतलब एक 2008 में जो एल्बम आई थी जाने तू या जाने ना मूवी जो बनी थी, उसका हर एक गाना वंडरफुली था। कंपोजर AR रहमान का ऑब्वियसली कंपोज्ड म्यूजिक था, तो हर एक गाना एक से बढ़कर एक होना ही चाहिए था। लेकिन जनरली AR रहमान के जो गाने होते हैं वो बहुत ही यू नो माइल्ड टोन, अमेजिंग, सूदिंग टू हियर होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जाने तू या जाने ना का म्यूजिक बनाया था, दैट वाज एंटायरली अ जेन जी थीम। जी हाँ, पप्पू गान डांस वाला वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम जाने तू या जाने ना एल्बम, जो कि यार तभी ऑलरेडी जेन जी एंथम बन गया था, बिफोर जेन जी वॉज इवन अ टर्म। जी हाँ, मतलब ये जो एक गाना है वो इंस्पायर्ड था बाय एवरी गर्ल्स अनोइंग क्यूट क्रश, जो कि एकदम परफेक्ट था। मतलब मस्क्यूलर था, पॉपुलर था, बस उसको नाचना नहीं आता था। और एक्चुअली ना पप्पू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्ची में रियल लाइफ बॉलीवुड पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि बॉलीवुड में पप्पू जैसा कैरेक्टर कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग सा गाना पप्पू कान डांस फ्रॉम जाने तू या जाने ना का एल्बम जो 2008 में बनी थी, जिसके सिंगर है बेनी दयाल और सतीश सुब्रमण्यम, कंपोजर है AR रहमान। और हाँ यार, ब्लेजी का वो रैप हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे वो जो रैप था वो एक रात पहले ही बनाया गया था, बिफोर द फाइनल मिक्स। तो चलिए सुनते हैं दिस एवरग्रीन सॉन्ग पप्पू कान डांस वाला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ ऐसे एल्बम्स जिनके गाने एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2008 के एल्बम की जाने तू या जाने ना, जिसको कंपोज किया गया है AR रहमान ने। और दोस्तों इसके ना हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, और पप्पू गान डांस साला तो हमारा फेवरेट है ही, बट अनादर सॉन्ग, अनादर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम इज नजरें मिलाना नजरें चुराना। जी हाँ, सिंगर्स AR रहमान, बनी दयाल, सतीश सुब्रमण्यम, अगेन कंपोज बाय AR रहमान। ये जो गाना बनाया था ना, वो बनाया गया था टू मिरर जेन वाई रिलेशनशिप, मतलब कंफ्यूजिंग, क्यूट से, कॉम्प्लिकेटेड से, और इस तरह से फिरमाया गया इस गाने को कि बस कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस वाइब्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि चलो सारे दोस्त एक साथ गए हैं, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, और एक साथ जब हम सारे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रिप पर मिलते हैं, हाउस पार्टी में मिलते हैं, तो एक माहौल जो बन जाता है और गाने गाने का जो मन करता है ना, बस वही माहौल इस गाने ने बनाया था। और शायद इसीलिए काफी बार जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये गाना जरूर सुनते हैं, नजरें मिलाना नजरें चुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जाने तू या जाने ना एल्बम, राइट फॉर यू हियर ओनली ऑन मिर्ची। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनादर एवरग्रीन एल्बम जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए नजरें मिलाना नजरें चुराना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vida es para burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट,
3: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
2: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर मेरी बात तो सुनिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कुछ ऐसे एल्बम्स जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है कुछ ऐसे एल्बम्स के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। तो आज 2008 के जाने दो या जाने ना के बारे में बात हो रही है, जिसमें यार इतने सारे गाने हैं और हर एक गाना उतना ही एवरग्रीन है। कंपोज्ड बाय AR रहमान, और इस एल्बम के हमने पप्पू कान डांस साला, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, इन गानों के बारे में तो बात की ही है, बट एक ऐसा गाना है जिसके वजह से अदिति नाम की लड़की फेमस हो गई। जी हाँ, कभी कभी अदिति संग बाय राशिद अली। दोस्तों यार ये वो गाना है ना कि अपनी जो दोस्त है अदिति, अगर आपकी भी कोई दोस्त है अदिति, तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपने कभी उसको ये गाना डेडिकेट नहीं किया है। जी हाँ, अदिति रूठ जाए, अदिति सैड हो जाए, तो बस कभी कभी अदिति बजा दिया जाए। वैसे तो यार ये जब गाना बनाया गया था तब राशिद अली कंप्लीटली नए थे, वो बस एक लंडन बेस्ड गिटारिस्ट थे जो रहमान जी के साथ जैम किया करते थे। लेकिन तब AR रहमान ने डिसाइड किया कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये गाना एक यूथफुल ट्रैक है, उनकी आवाज बहुत ही अमेजिंग लगेगी, एक फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स है जो आपको पसंद है जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI, और तब तक के लिए जाने तू या जाने ना का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची मंडे ग्रूव्ड ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रोशी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर। क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स म्यूजिक ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशी के फंडे। तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ right here on Mirchi. This is Mirchi Siddhi signing off. Give me, give me, give me.

0: बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं।